0: Biker Radio.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 2400 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
5: Atif Aslam live in the UK.
4: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
5: Book your tickets now at AXS.
4: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Packed for the trip? Gifts? Passport?
7: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
6: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
7: Simzy?
6: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
8: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com.
9: T's and C's apply.
10: Jump on to the Radio Wally roller coaster every night at 7 p.m.

मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्सियों प्रगट

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच्छ मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। है भी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन उपाई। कर कर वेखे की ता अपना, जिव तिस दी वड्याई।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बोला खोए लख होवें लखवीस लख

चार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग।

0: की नजर
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक मार्ट्रोइ फूड कंटेनर्स
2: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट खाना फाइव कोर्स लंच सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
3: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
4: No more worries for me or
5: Southall Travel, at all protected.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introduce
5: Southall Travel, at all protected.
6: Location.

बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। It's अंताक्षरी टाइम विद खो।

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
1: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming to cinemas on May 22nd.
2: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
3: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
4: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: वॉटफर्ड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
6: देन कम टू गॉडफादर एंड कंपनी, विवेक हाउस, बार एंड किचन।
5: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला टू बिरयानी, फ्रेश ब्रेड्स एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स।
6: हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
5: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, मेक इट मेमोरेबल।
6: गॉडफादर एंड कंपनी, टेस्ट द लेगेसी, लिव द मोमेंट।
5: विजिट विवेक हाउस वॉटफर्ड, कॉल 07300998823।
6: बुक योर टेबल टुडे।
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: Discover Portugal with a Lisbon and Madeira Twin Centre Escape. Fly from the UK, enjoy 3-night stays with breakfasts, connecting flight and more. Prices start from just £599 per person. For great deals on cruise and holidays, visit www.skylordcruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
11: Mom, I'm outside. Yes, literally just landed.
12: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
11: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
12: And you didn't pay those massive roaming charges?
11: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
13: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
14: London, good news! आपका फेवरेट iTag अब TRS Cash and Carry South Hall में. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTag is open 24/7 with free parking. Full iTag at Unit 123 South Bridge Way, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
15: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
16: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
15: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
16: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
15: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
16: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
17: अल नूर, पुराना बाएतमाद नाम, नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस, प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस, एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है। अल नूर, टेस्ट द डिफरेंस।
18: लाइक अ रेडियो नेटवर्क, प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, रगासन। फील गुड ट्रैक, brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट खाना फाइव कोर्स लंच सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
1: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ
2: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स जो है बारबेक्यू लेमन चिली मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल
1: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
3: Street Foods in Chelmsford, an authentic Indian takeaway in Chelmsford. Street Foods also specialise in catering orders. Call 0561 359 604. That's 0561 359 604 to place your order.
4: Fire up the Barbie! With Aldi's barbecue bundle, you can rustle up burgers to feed four. Get British beef quarter pounders, white rolls, baby leaf salad, cheese slices and tomato ketchup all for under a super £6. That's flipping amazing value from Aldi. Which cheapest supermarket 2025?
5: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
6: Choice Active. Drive Time.

0: आज तो ये गाना बनता है ना बॉस. व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक. बिग शॉट्स कैनॉट टू शाम. फर्स्ट वन इन विद द राइट आंसर. ऑफ कोर्स इट्स ऑल अबाउट रिमाइंडिंग यू दैट फ्रैंकी गोज टू बॉलीवुड. द स्टेज म्यूजिकल कंटिन्यूज विद इट्स 2026 टूर. टिकट्स अवेलेबल राइट नाउ एट rivcotheatre.com. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स आपका अपना लाइका रेडियो. सो द टूर इन थिएटर रॉयल विंडसर एंड्स दिस सैटरडे एंड देन फॉर द 26th ऑफ मे दे आर बैक एट द क्वींस थिएटर इन हॉर्नचर्च. 2nd of June for a week they are at the Oxford Playhouse. Wednesday the 10th of June for up to Saturday they are at Birmingham Rep. And then of course 24th of June they'll be ending the tour at the Bristol Old Vic. So pick up your tickets right now and do not miss out.
1: Gold Rate is sponsored by Gold Bank London. Visit us online at gold-bank.co.uk or visit us in store on 215 The Broadway, Southall.
0: And your gold is currently trading at £108.41 per gram.
1: Gold Rate is sponsored by Gold Bank London. Gold outperforming all other investment options. So invest in gold with Gold Bank London. 215 The Broadway, Southall or buy from us online at gold-bank.co.uk.
0: It's that time, baby. Let's go. Two big checks. We're going back to back.

0: everyone's favorite ride, the Radio Wally Roller Coaster.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays, हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं? तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
4: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
6: Want magic in every bite? Grab Hera Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hera Foods, king in quality, king in taste.
7: हिमालय कार्पेट्स की मेगा बैंक हॉलीडे सेल शुरू हो चुकी है. 500 से ज्यादा कार्पेट रोल्स 30% तक रिड्यूस्ड. तमाम रूम साइज रेमिनेंट्स पर अप टू 40% ऑफ. वाइनल्स और रग्स सब पर रिडक्शंस. हिमालय कार्पेट्स की बैंक हॉलीडे सेल इज नाउ ऑन. साउथ हॉल ब्रांच में तशरीफ लाइए या विजिट himalayacarpets.com.
8: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जेमिन फूड्स.
9: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट.
8: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जेमिन फूड्स.
10: अल नूर, पुराना बाएतमाद नाम, नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस, प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस. एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है. अल नूर, टेस्ट द डिफरेंस.
0: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासान. A true Radio Wally Cracker Classic. Name the 90s number. This is Leica.